0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोस, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसे तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अग्गे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: क्या बात है, चलते हैं कॉल दे वाले। जी सत श्री अकाल, 4677।
1: हाँ जी, की हाल है जी?
0: बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ।
1: बस ठीक ठाक। मैं कहा जी, सब तो ज्यादा बोलिया जाने वाला झूठ एक दिन दे विच तां जो कोई पुछदा है की हाल है, ओहदा जवाब जिहड़ा जी सब तो ज्यादा दिता जाने वाला झूठा जवाब है जी।
0: जवाब केड़ा हो?
1: बस ठीक है, ठीक पता कितने हुंदा जी।
0: भाई जी सही गल दसा, तुसी मेला लुट लिया गल कह के। पहली गल बंदा हुण मैं कहना हाँ जी भाई जी की हाल चाल है, बंदा जो मर्जी करदा होवे बंदा कहंदा हाँ जी ठीक है।
1: भावें दुनिया जिवें मर्जी चलदी होवे उहने गल मूंह ते रट्टी होई है, ठीक है जी,
0: ठीक है। हां बंदे आके रोंदा होवे ना, बंदे नूं कहो की गल हो गई, ठीक है, हाँ मैं ठीक हां। पछाण लै भाई, तुसी भी रग नूं पछाण लै। बहुत सही, इह वी जवाब सब तो सही है, पर अजे आपां होर वी एक्सपेक्ट करदे आं, तुसी मेला लुट लिया बस। थैंक यू वीरे, तुहाडा नाम?
1: प्रथम नाम है जी।
0: प्रथम, क्या बात है प्रथम वीरे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: ठीक ठाक,
0: थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

क्या बात है, वेरी नाइस, बड़ा शानदार गीत ते म्यूजिक यार बड़ा वधिया। ट्रू स्कूल दा ए म्यूजिक है, देसी टच दे विच सुन के बंदे दा मलो मली दिल करदा है वी यार, मोटे हिल ही जांदे आ बंदे दे, ते मोटे हिलाने भी चाहिए आ, नाले कसरत हो जाती, नाले बंदे दा मन खुश हो जाता। प्रोग्राम सर्व रेडियो तुहाडे होस्ट सरबजीत सिंह दे नाल। बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग सवाल तुहानू आपां पुछ रहे हां, तुहानू की लगता है सब तो वध जिहड़ा इंसान, कोई भी इंसान सब तो वध झूठ बोलता, झूठ जिहड़ा बोलन दे विच कॉमन है, सब तो वध बोलन जाण वाला झूठ किहड़ा है? ते 905-673-3337 गल बड़ी शानदार कीती उन्होंने, कहिंदे वी सब तो ज़्यादा बंदा यही कहिंदा, हाँ जी की हाल चाल है, ठीक है, हुण ओह ठीक है किन्ने परसेंट ठीक है ये नहीं पता, परसेंट एक ठीक है कि परसेंट 100 ठीक है, बट ठीक है, पर होर की जवाब हो सकता है? तुसीं सुणदे हो आम ही, ये आपां रीयल गल कर रहे हैं, रीयल अपनी लाइफ दे विच, कोई इदां बई अपने वल्लों मारन वाली गल नहीं, रीयल दे विच, रियलिटी दे विच। 905-673-3337 ते कॉल करके जरूर शेयर करो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 905-673-3337।

चंद्रपाल कृष्णमाश्रये पंडिताखिलस्तुतं पुंडरीक भास्वरं कुंडल प्रभासमान तुंडदंड मंडलं पुंडरीक सन्नतं जगन्नतं मनोज्ञकं गोपाल बालचार चोर।

0: है आप सभी का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और सभी भाई सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बनी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे की। तो अब अगर आप अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेके आना चाहते हो, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आउटडोर फर्नीचर, या फिर आपने किसी किस्म का भी आपको बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो और जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए मदर्स डे स्पेशल देखने के लिए topchoiceelectronics.com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मदर्स डे की। और मदर्स डे ऐसा है कि अगर आपके बच्चे आपकी सम्मान करते हैं तो वो ही सबसे बड़ा जिंदगी का गिफ्ट है। आपके बच्चे जिंदगी में आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए मदर्स डे का सबसे रोज, हर रोज मदर्स डे है ऐसे हालात में, और हर रोज मदर्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है कि चलो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मदर्स डे के लिए आप ज्यादा, आपके लिए ये है कि आप उनके साथ टाइम बताएं। अगर एल्डरली हैं तो उनका आजकल क्या होता है कि ओल्ड एज में जो कैंस नहीं खुलते हैं, कई काम जो उनसे नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आप उनसे सलाह बना लें, प्लान बना लें अपनी माँ से कि किस एक हफ्ते में, महीने में एक बार आप उसके लिए जरूर अपनी माँ के पास जाएं, और उनको अगर मुश्किल होती है इसी तरह के कई तरह के काम करने की तो उसमें आप उनकी हाथ बटाएं, मदद करें। वैसे तो अगर बच्चे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, अपनी माँ की केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बाहर के लोग, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उसका जो इंसान को बच्चे आके करते हैं तो उसका जो उनका जो खून है वो बढ़ जाता है कि भी हाँ मेरा बच्चा आया, उसने मेरे पास टाइम बताया, इसी बहाने से आप अपनी माँ के साथ टाइम भी बता लेंगे। और टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं सोचती हूँ। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मटेरियल चीज होती है किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, तो फिर भी चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना, अपनी आपके दिल खुश जिससे हो। तो क्या होता है कि माँ की गोद जो होती है उसका भी एक अलग आराम जो मिलता है, जो शांति मिलती है। तो अगर आपकी माँ है तो आप जरूर कभी ना कभी उसकी गोद में जरूर बैठिएगा, क्योंकि उसका जो आपको शांति मिलेगी तो वो अलग ही चीज दुनिया से, दुनिया के कोई भी झूला आपको वो जो सुख है, शांति है, वो नहीं दे सकता। तो आइए आपको इसी विचार के साथ एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम आपका जो मनोरंजन है करते रहेंगे। तो आज जो सभी रेडियो स्टेशन पे आएगा गाना जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो
1: मैंने अपने

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अपनी माँ के लिए आप सोने के गहने, सोने की बार, या फिर आप छोटे छोटे कोई आप डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो, अप टू 70% ऑफ आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे एल मदीना ज्वेलर्स पे, मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स की पूरी टीम आपको इस मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो आप उनकी मदर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकार शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए आपको डिजिटल गहने चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन के, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए। 905-673-0100 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी किस्म का भी आपने बढ़िया सा आपने घर खरीदना है, होटल मोटल खरीदना है, किचन और वाटर लुक वॉल्क में, तो आप रिसीव सेंट को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपने किसी किस्म का भी बढ़िया सा आपने ट्रक की रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपकी सर्विस देते हैं वो, तो ये है आपके लिए बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर। 715 पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-624-0055 पर कॉल कीजिए। 905-625-0055 पर कॉल कीजिए। अगर आपने बढ़िया खाना लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी इवेंट के लिए, अभी पिकनिक्स बहुत सारी होंगी बहुत सारी कंपनीज की, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मिसिसागा में मौजूद है, तो लाइव कुकिंग के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 905-814-1730। वहाँ पे भी मदर्स डे के लिए अपनी मदर को ले जा सकते हैं, न्यूली रेनोवेटेड है, तो यह है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अब अगर आपने घर खरीद लिया, मूविंग तो करना होता है, बहुत सारी मूविंग होती है समर टाइम में, तो आप एचके मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में, बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-804, अभी कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 HK Movers। तो अब आपके लिए एक और बढ़िया सा पंजाबी का गीत मैं सुनाती हूँ आपको, ये बड़ा कॉमन है पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये जो गीत है आपके लिए बहुत ही कुलदीप मानक जी का गाया हुआ ये गीत है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: दुनिया में कुलदीप मानक जी, लेकिन उनका जो ये गाना है ये जब तक दुनिया रहेगी लोग इसको सुनते रहेंगे, वर्ष रहते रहेंगे। और हम किस्मत वाले हैं कि जो कि हमने उनको देखा है और उनको लाइव देखा है, गाते हुए देखा है। तो आइए इसी विचार को लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, लेकर के बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7004। वो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, ये हैं आपके लिए HK मूवर्स। और अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है।
1: तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जगोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ। उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल CA पे जाइए। आँखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5703 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: सिर में शक्कर पारे मक्खी बेसन पिस्ता बर्फी मंदिर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150-016-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको और भी बढ़िया बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। पर्सनल हो या बिजनेस, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो अपने टैक्स भरने के लिए। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप खुशवंत सिंह व्यास को कॉल कीजिए 416-670-1313-416-677-1313 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेने हैं, मदर्स डे के लिए टीवी लेना है, गिफ्ट देना है, या फिर आपको किचन की गैजेट्स गिफ्ट देनी है लेटेस्ट एडवांस्ड वंस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको आपके लिए एयरपोर्ट पे मौजूद है और दूसरे उनकी लोकेशन ब्रैम्पटन में, आपके लिए दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0042। आपको आउटडोर अभी बारबेक्यू चाहिए, बढ़िया से बारबेक्यूज आजकल बहुत टेक्नोलॉजी वाले डिजिटल वाले आगे हैं, तो आप ऐसे एडवांस वाले लेना चाहते हो ऐसी चीज़ें तो आउटडोर फर्नीचर भी है, आपको बहुत एडवांस बढ़िया मिलेगा। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, मदर्स डे फादर्स डे किसी भी मौके के लिए आपको खरीदने हैं गिफ्ट्स तो इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में 9057990045 और 905-799-0045 जहाँ आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स का बारे में जान सकते हो और उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो आइए आपको ये एक बढ़िया सा गिफ्ट सुनाते हैं। ये दिलीप कुमार यादव है।

रखते ही सही उल्फत न सही नफरत ही सही इसको भी मोहब्बत कहते हैं। लाख छुपाए तेज मगर हम दिल में समाए रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग सपा से चाहे न कर इकरार मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप

जी हाँ, तो क्या कमाल के गाने हैं। जो पुराने गाने थे उनका जो फील था वो एक अलग ही चीज है, जब सुनते हो तो बहुत ही मन को भा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर के, और एक और बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। अब लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये भी

0: अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त की तरफ है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिएगा। बहुत ही इमोशनल है, लेकिन सच कह रहे हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सुहागता पला।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: पिज्जा डिपो दी एक नवी पेशकश, लोडेड फ्रेंच फ्राइज विद बटर चिकन और तंदूरी वेजी पनीर, एक बार ट्राई तक करो।
1: पिज्जा डिपो दा पिज्जा, पिज्जा डिपो दा पिज्जा।
0: पिज्जा डिपो, कॉल 310-9711,
2: दैट्स 310-9711।
1: पिज्जा डिपो दा पिज्जा।
3: Welcome to Glitz by Gill's Banquet Hall, a beautiful space with modern design, state-of-the-art sound, state-of-the-art lighting, and wait till you see mouth-watering delicious food. Whether it's an engagement party, a wedding, a birthday party, or corporate event, Glitz by Gill's Banquet Hall has exactly what you need. Moments become a memory, memories become treasures. Call 905-724-7100, 2131 Williams Parkway, Glitz by Gill's Banquet Hall.
4: ओ हाँ भाई, अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल्ला?
5: आ एक्सीडेंट हो गया, कार दा टो ट्रक आए नू फोन कर लगी हां।
4: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नू, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते।
5: आहो मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां नाल डील कर दिया, नाल ही हुण मेरी कार दा एमिशन टेस्ट करा दो, नवे टायर पवा दियो, उधरों ब्यूटी पार्लर जाना, उधरों कार दा पंगा। आ छेती करो, स्काईडोम वाले नू फोन करो, 905-874-9878।
4: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडम तो, सोने ते सुहागे वाली गल हुंदी जे।

अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदेवता गृणीये सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध

शरणागतम् वं हृं हृं कामये देवी बलिहोम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम्।

ओम अथ श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्र श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्रस्य श्री रामचंद्र भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थि माला मंत्र जपे विनियोगः अथ करण्यासः। ओम राम शाखा नमः। ओम रीं गर्दनीभ्याम नमः। ओम रूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम रीं अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं गणिचिकाभ्याम नमः। ओम रः कर्तर्कर्विष्टाभ्याम नमः अद अंगन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीं शिरसे स्वाहा। ओम रौं शिखायै वषट। ओम ऐं ओम रौं नेत्रत्रयाय वषट। ओम रः अस्त्राय वषट। अथ ध्यानम् वामेकरे वैरवहं महन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाढ्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणं भजीज्वरत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। ओम नमो भगवते विचित्रवीर हरमते प्रलयकालानल प्रभाज्वरत्कृतापवज्रदेहाय अञ्जनेयगर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याघ्र मुखं बंधय बंधय साप मुखं बंधय बंधय राज मुखं बंधय बंधय सभा मुखं बंधय बंधय शत्रु मुखं बंधय बंधय सर्व मुखं बंधय बंधय लंका प्रसाद भंजन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं रीं क्लीं श्रीं सर्वान् आकर्षय आकर्षय शत्रून् मार्दय मार्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम रीं रों रीं रों रः श्री विचित्र वीर हरमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट स्वाहा। एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन्माला।

0: है आप सभी का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और सभी भाई सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बनी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे की। तो अब अगर आप अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेके आना चाहते हो, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आउटडोर फर्नीचर, या फिर आपने किसी किस्म का भी आपको बारबेक्यूज चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो और जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए मदर्स डे स्पेशल देखने के लिए, topchoiceelectronics.com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मदर्स डे की। और मदर्स डे ऐसा है कि अगर आपके बच्चे आपकी सम्मान करते हैं तो वही सबसे बड़ा जिंदगी का गिफ्ट है। आपके बच्चे जिंदगी में आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए मदर्स डे का सबसे रोज, हर रोज मदर्स डे है ऐसे हालात में, और हर रोज मदर्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है कि चलो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मदर्स डे के लिए आप ज्यादा, आपके लिए ये है कि आप उनके साथ टाइम बताएं। अगर एल्डरली हैं तो उनको आजकल क्या होता है कि ओल्ड एज में जो कैंस नहीं खुलते हैं, कई काम जो उनसे नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आप उनसे सलाह बना लें, प्लान बना लें अपनी माँ से कि किस एक हफ्ते में, महीने में एक बार आप उसके लिए जरूर अपनी माँ के पास जाएं, और उनको अगर मुश्किल होती है इसी तरह के कई तरह के काम करने की तो उसमें आप उनकी हाथ बटाएं, मदद करें। वैसे तो अगर बच्चे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, अपनी माँ की केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बाहर के लोग, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उसका जो इंसान को बच्चे आके करते हैं तो उसका जो उनका जो खून है वो बढ़ जाता है कि भी हाँ मेरा बच्चा आया, उसने मेरे पास टाइम बताया, इसी बहाने से आप अपनी माँ के साथ टाइम भी बता लेंगे। और टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं सोचती हूँ। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मटेरियल थिंग्स होती हैं किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, तो फिर भी चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना, अपनी आपके दिल खुश जिससे हो। तो क्या होता है कि माँ की गोद जो होती है उसका भी एक अलग आराम जो मिलता है, जो शांति मिलती है। तो अगर आपकी माँ है तो आप जरूर कभी ना कभी उसकी गोद में जरूर बैठिएगा, क्योंकि उसका जो आपको शांति मिलेगी तो वो अलग ही चीज दुनिया से, दुनिया के कोई भी झूला आपको वो जो सुख है, शांति है, वो नहीं दे सकता। तो आइए आपको इसी विचार के साथ एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम आपका जो मनोरंजन है करते रहेंगे। तो आज जो सभी रेडियो स्टेशन पे आएगा गाना जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो
1: तुमने मान ली थी तो मैंने क्यों मानी, तुम तो कौशल्या थे, मैंने अपने दुख में थी बना दी।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अपनी माँ के लिए आप सोने के गहने, सोने की बार, या फिर आप छोटे छोटे कोई आप डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो, अप टू 70% ऑफ आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे अल मदीना ज्वेलर्स पे, मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स की पूरी टीम आपको इस मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो आप उनकी मदर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकारी, शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए आपको डिजिटल गहने चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन के, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी किस्म का भी आपने बढ़िया सा आपने घर खरीदना है, होटल मोटल खरीदना है, किचन और वाटर लुक वॉल्क में, तो आप रिसीव सेंट को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260। आपने किसी किस्म का भी बढ़िया सा आपने ट्रक की रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपकी सर्विस देते हैं वो, तो ये है आपके लिए बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर 1715 पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-624-0055 पर कॉल कीजिए, 905-625-0055 पर कॉल कीजिए। अगर आपने बढ़िया खाना लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी इवेंट के लिए, अभी पिकनिक्स बहुत सारी होंगी बहुत सारी कंपनीज की, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मिसिसागा में मौजूद है, तो लाइव कुकिंग के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 905-814-1730। वहाँ पे भी मदर्स डे के लिए अपनी मदर को ले जा सकते हैं, न्यूली रेनोवेटेड है, तो यह है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अब अगर आपने घर खरीद लिया, मूविंग तो करना होता है, बहुत सारी मूविंग होती है समर टाइम में, तो आप एचके मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में, बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-804 अभी कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 HK Movers। तो अब आपके लिए एक और बढ़िया सा पंजाबी का गीत मैं सुनाती हूँ आपको, ये बड़ा कॉमन है पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये जो गीत है आपके लिए बहुत ही कुलदीप मानक जी का गाया हुआ ये गीत है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, तो एकदम उन्होंने फॉर एवर सॉन्ग, ये फॉर एवर जैसे ग्रीन सॉन्ग उन्होंने गा दिया, और सदियों तक लोग वो तो नहीं रहे दुनिया में कुलदीप माणिक जी, लेकिन उनका जो ये गाना है ये जब तक दुनिया रहेगी लोग इसको सुनते रहेंगे और सराहते रहेंगे, और हम किस्मत वाले हैं कि जो कि हमने उनको देखा है और उनको लाइव देखा है, गाते हुए देखा है। तो आइए इसी विचार को लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, लेकर के बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-704। वो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, ये हैं आपके लिए एचके मूवर्स। और अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है,
1: आपको अपने आप चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-7033 पर कॉल कीजिए 905-456-2733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको और भी बढ़िया बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। पर्सनल हो या बिजनेस, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो अपने टैक्स भरने के लिए। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप खुशवंत सिंह दास को कॉल कीजिए 416-670-1313-4167-71313 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेनी है, मदर्स डे के लिए टीवी लेना है, गिफ्ट देना है, या फिर आपको किचन की

जी वाले डिजिटल वाले आ गए हैं, तो आप ऐसे एडवांस वाले लेना चाहते हो ऐसी चीजें, तो आउटडोर फर्नीचर भी है आपको बहुत एडवांस बढ़िया मिलेगा, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। मदर्स डे, फादर्स डे, किसी भी मौके के लिए आपको खरीदने हैं गिफ्ट्स, तो इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, 9057990045 और 9057790045, जहाँ आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स का बारे में जान सकते हो और उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो आइए आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं।

ही सही हो, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। रात छुपाए थे मगर हम दिल में समाए रहते हैं, शेर भी दिल में आज उठी है जाग, सपा से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार, मेरी नजर की धूप न भरती रूप।

जी हाँ, तो क्या कमाल के गाने हैं। जो पुराने गाने थे उनका जो फील था वो एक अलग ही चीज है, जब सुनते हो तो बहुत ही मन को भा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर के, और एक और बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। अब लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये भी

अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त की तरफ है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिएगा। बहुत ही इमोशनल है, लेकिन सच कह रहे हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सुवर्दा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

हम मागे भगत एकाकी सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लिखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटे जम की बाकी

क्या हुआ था जी? 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातां हो रही हैं। और अज बहुत कुछ आ बोलन नूं क्योंकि मदर्स डे आ और मदर्स डे ते तां जिन्ना मर्जी बोलो उन्ना ही घट आ। सो लख छुपावां मां अपनी तों, लख छुपावां मां अपनी तों, कोई दर्द ना छुपदा मेरा। लख छुपावां मां अपनी तों, कोई दर्द ना छुपदा मेरा। पढ़ी लिखी नहीं मां मेरी, बहुता पढ़ी लिखी नहीं मां मेरी, पर झट पढ़ लैंदी है चेहरा, झट पढ़ लैंदी है चेहरा। सो मावां, देखो मावां नूं कुदरत ने इस ताकत दे नाल नवाजिया कि कई बार तुहानूं दसण दी लोड़ नहीं पैंदी कि तुसीं किस दुख चो तकलीफ दे विचो। कई बार तां तुसीं सत समुंदरों पार बैठे होंदे आ, पर मावां झट पढ़ लैंदियाँ, झट वो एक तार जुड़ी होंदी ना, कहिंदे होंदे ना सियाणे एक तार जुड़ी होंदी आ, तो उस तार नूं झट समझ लैंदियाँ कि भई मेरा पुत या मेरी धी किसी मुसीबत दे विच आ, ठीक ठाक होवे। सो उत्थों बैठियां वो दुआवां करदियाँ ते वो दुआवां लगदियां वी आ। सो माँ दे उपर तां यार बस जिवें रमेश जी कह गए आ कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, फिर इमोशनस अंदरों वो चीज़ां भव कर देने वाली होंदियाँ। सो 905-673-3337 905-673-3337 रमेश जी साडे नाल जुड़ चुके सी, आई थिंक रबता टुट गया। रमेश जी सानूं तुसीं सुन पा रहे हो? आई थिंक रबता साडा टुट गया। सो फिर तो कोशिश करते हैं कि रमेश जी होना नाल जुड़िए ते गल्लां बातां करिए। 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातां चल रही ने। 905-673-3337

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

फीसदी मानसिक शांति पाओ। कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकियां निकियां किश्ता। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।

0: you ready? पिक्का जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन. खास फेस्टिव सीजन ले कैटरिंग स्टार्ट सिर्फ 9.99
1: जिस विच मिलनगिया 8 आइटम्स ए लाइव कैटरिंग भी कर देने.
0: फंक्शन वड्डा होवे या छोटा कैटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे.
1: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी है वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस ते.
0: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन.
1: कॉल 6474294040
0: जंक्शन खुशियां दा सेलिब्रेशन.
2: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी
3: बस इनी गल हो कार

0: listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
1: Punjabi Versa, radio and television present.
2: Bhajan and Ghazal Samrat, Anup Jalota Ji. Aa rahe hain aapke shahar apne siron ka jadoo bikhere.
3: Embassy Grand Convention Center mein aapko milte hain 2 November ko.
4: Akhar bana diya mujhe.
3: जरूर आइएगा, भूलेगा नहीं। ये एक गजल भजन इवनिंग है, लेकिन इसमें मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट भी दे रहा हूँ, कुछ उनके गाने भी वहाँ पेश करूंगा।
2: गाने भी सारे सुनहरे और आवाज भी सुनहरी अनूप जलोटा जी की। फॉर टिकट्स गो टू इवेंटब्राइट और कॉल सिंगर जी एट 647-448-1000,
1: 647-448-1000। नवंबर 2nd शाम को 5 बजे मिलते हैं एम्बेसी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर 8800 द गोर रोड ब्रैम्पटन।
5: ओ आज ताँ कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदो ही बनू जदो नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइनी क गल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
6: जी हाँ, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस दे। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888। घर तो अपना एडा वड्डा इन्ना सोना ले लिया, हुन अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवीज सब इत्थों ही लवांगे। इन्ना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसे ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2888, 905-450-2888।
7: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मठियाईयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
1: कारां, एसयूवी, ट्रक, पिकअप ट्रक, घरां दे सोफे, कारपेट, कुर्सियां, शैंपू कराउण वास्ते अनमोल सिंह जी पक्के कनेडा वालियां नू फोन करो 416-475-6600। $100 विच तुहाडी कार शैंपू कर दित्ती जावेगी। 416-475-6600। शैंपू तों बाद तुहाडियां कारां लिश लिश कर उठणगियां। 416-475-6600।
8: अस्थमा,
9: पुराना जुकाम,
8: छिक्का होना,
9: बलगम,
8: स्किन एलर्जी,
9: वीट एंड मिल्क एलर्जी,
8: सोरोइसिस,
9: कब्ज अते हेयर लॉस,
8: एसिडिटी वर्गियां बीमारियां दा सफल अते पक्का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयां नाल।
9: बायो वे क्लिनिक, आज ही संपर्क करो 905-790-1500,
8: 9057901500। बायो वे क्लिनिक तुहाडे शहर ब्रैम्पटन विच,
9: जो आए सो राजी जाए।
8: बायो वे क्लिनिक।
1: PNC and Company, one stop financial service, accounting and tax, small business and personal loan, mortgage service, real estate investment service, POS system provider, government grants waste, one stop financial service te aao. PNC and Company, 4 location to serve you, Brampton, Mississauga, London, Oakville, one stop financial service. For more information, call Chaudhary Heather 437-262-7743, 437-262-7743।
10: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice Insurance Agency. If you have any questions,

0: इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो